शेरा वेगं शतचंद्रः अभिश चरंतन चित्रं मुपार्यतो हरि कृत्वागहा संघर्तुत्स्वरूपनं निमिलिताक्षं च गृहे महाजः विश्वक्स्फुरन्तं मन्द्रः नातुरं हरेर् व्यालोयता कुम्भुलिशाक्षतध्वजम् द्वार्योरुन्मापत्य ददा लीलया नाखैर्यथा हिं गरुदो महाविष्णुः।